बहुत दिन से मिस आए मुकने को न की तनिया हुस्तु सी थादी मर्चेंग की इमान न दिली तनंग दो तन बंगिस